थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सखी छायाजी अस्ति। अद्य युगादि पर्वः, नूतन संवत्सरस्य प्रथमं दिनम्। भारतीय कालगणनानुसारं कलियुगस्य आरम्भः 5122 इयर्स् पूर्वम् अभवत्। सर्वेभ्यः युगादि पर्वस्य शुभाशयाः। अस्मिन् शुभदिने वयं संक्षेपेण गीतोपदेशं शृण्मः।
1: कुरुक्षेत्रे रणाङ्गणे अर्जुनः अहं युद्धं न करोमि इति उक्त्वा रथे उपविष्टवान्। तदा भगवान् श्रीकृष्णः गीतोपदेशं कृतवान्। तं गीतोपदेशं ज्ञातुम् इच्छामि।
0: सम्पूर्णा भगवद्गीता एव श्रीकृष्णस्य उपदेशः अस्ति, अतः गीता सम्यक् पठनीया। अत्र संक्षेपेण किञ्चित् वदामि, सर्वे शृण्वन्तु। भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य एकादश श्लोकतः गीतोपदेशः आरभते। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। अर्जुन, त्वम् अचिन्तनीयान् विषयान् मा चिन्तय। पण्डिताः गतासून् अगतासून् च न अनुशोचन्ति, त्वमपि शोकं मा कुरु। एतान् सर्वान् अहं पूर्वम् एव मारितवान् अस्मि, त्वं निमित्तमात्रं भव। अर्जुन, तुम जिन विषयों की चिंता नहीं करनी चाहिए उन विषयों की चिंता कर रहे हो। ज्ञानी लोग जीने मरने की चिंता नहीं करते हैं। तुम शोक मत करो। युद्ध में जो भीष्म द्रोणादि सब लड़ने के लिए आए हैं, उनको मैंने पहले ही मार दिया है। तुम केवल निमित्त मात्र बनके युद्ध करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः, मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करणे तव अधिकारः, न तु फले। फलस्य विषये चिन्ता मा कुरु, कर्म कुरु। ऐसा उपदेश, कर्म करो, फल की आशा छोड़ के कर्म करो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया। उसके बाद ततः श्री कृष्णः अर्जुनाय विश्वरूपं दर्शितवान्। अर्जुनः दिव्यं चक्षुः प्राप्य श्रीकृष्णस्य देहे सर्वान् देवान्, सर्वान् भूतविशेषसमूहान्, गजान्, अश्वान्, ऋषीन्, ब्रह्मदेवम्, ईश्वरं च दृष्टवान्। श्रीकृष्णेन हतान् द्रोणं च, भीष्मं च, जयद्रथं च, कर्णं च तथा अन्यानपि योधवीरान् अर्जुनः श्रीकृष्णस्य देहे दृष्टवान्। तत् दृष्ट्वा अर्जुनस्य मोहः नष्टः, सः ज्ञानं प्राप्तवान्। अर्जुनः भगवन्तम् उक्तवान्, नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा, त्वत्प्रसादात्मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव। एषः श्लोकः गीतायाः अन्तिमे अध्याये, इत्युक्ते अष्टादशे अध्याये अस्ति। श्लोकसङ्ख्या अस्ति 73, इत्युक्ते 73। This is almost at the end of Bhagavad Gita. Asmin shloke gitopadeshasya parinamah kah iti jnatum shakyate. Gitopadeshena arjunasya mohah nashtah, sandehanam nivaranam abhavat. Arjunah yuddham kartum utthitavan. Gitopadesh sunkar Arjun yuddha karne ke liye uth khada hua. Uska moh nasht hua, sandehon ka nivaran hua. Kshatriya dharma palan karne ke liye vah sajj ho gaya. Is prakar भगवद गीता तत्वज्ञान सिखाकर मनुष्य के अज्ञान का नाश करती है, मनुष्य को जीवन का ध्येय बताती है, कर्तव्य का स्मरण कराके स्वधर्म पालन की प्रेरणा देती है। मनुष्य कौन सा भी छोटा बड़ा काम करने वाला हो, वह भगवद गीता से प्रेरणा पा सकता है और जीवन का परम लक्ष्य हासिल कर सकता है।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली बनोतोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ठेवून आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: निर्मलता का महत्व. आजकल स्वास्थ्य के प्रति लोग बड़े जागरूक होते जा रहे हैं. बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम के साथ साथ आहार का भी पूरा ध्यान रखते हैं. खान पान की हर चीज वस्तु शुद्ध हो इस पर सभी सतर्क रहते हैं. पीने के पानी को ही ले ले. महीन से महीन कचरे व मिलावट से मुक्त मिनरल वाटर सभी इस्तेमाल करते हैं. दिनों दिन मिनरल वाटर का प्रचलन कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है. वास्तव में ये जल की शुद्धता ही नीर की निर्मलता है. सच पूछो तो अंदर बाहर की निर्मलता में ही जीवन का सच्चा सुख समाया हुआ है. निर्मलता यानी स्थूल और सूक्ष्म रूप में मैल से मुक्त होना. हृदय से अहम भावना रूपी मलिनता का त्याग करना निर्मलता है. मन में ईर्ष्या, नफरत, वैर, विरोध आदि नकारात्मक मलिन भावनाएं न होना भी मानसिक निर्मलता है. अहंकार से रहित वाणी निर्मल वाणी है. जैसे अगर भोजन और जल में कोई अशुद्ध हानिकारक तत्व चला जाए तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाता है. ऐसे ही मन, वाणी, कर्म और संबंध संपर्क में कोई भी व्यर्थ विचार, अवगुण व विकार रूपे मेल आ जाए तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है. मन की सुख और शांति छीनी जाती है. मन, वाणी, कर्म में विकारों की प्रवेशता से जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाता है. कर्म में दोष और अवगुण रूपे मेल आने से चरित्र का पतन होने लगता है. लेकिन अगर मन को निर्मल बनाया जाए तो वाणी और व्यवहार बदल सकते हैं. व्यक्तित्व में निखार भी आ जाता है. लेकिन अगर मन को निर्मल बनाया जाए तो वाणी और व्यवहार बदल जाते हैं और व्यक्तित्व में निखार भी आता है. अतः चरित्र निर्माण में निर्मलता का बड़ा महत्व है. निर्मलता से हृदय पवित्र मंदिर बन जाता है. निर्मल वाणी से किसी के दिल में सहजता से प्रवेश भी किया जा सकता है. ब्रह्मा कुमारीज की द्वितीय मुख्य प्रशासिका डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी निर्मल वाणी से सभी को मोहित कर सभी के दिलों पर राज करती थी. निर्मलता के महान गुण से ही किसी के दिल में भी सहज राज कर सकते हैं. अतः निर्मलता को अपनाइए और जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाहनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2,009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
3: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
2: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
3: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
2: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: दांत हाथ खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन,
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटका और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित ही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
5: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
6: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
5: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
7: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ, वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
5: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
8: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
10: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष 5 देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत का रिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल हैं। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसु। ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे के अवसर पे एक विशेष प्रोग्राम लेके आई हूँ। मैं हूँ आपके साथ मनीषा। आज मेरे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुप्रिया कुलकर्णी, जो डीन ऑफ फैकल्टी और प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मटेरिया मेडिका केली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बसवंत कुर्जी में है। मैम, वेणुधोनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: आज हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पे बात करेंगे, तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि हैंड वॉशिंग इतना जरूरी है क्या?
1: सभी को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रिया बात कर रही हूँ। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि हाथ धोना कितना जरूरी है अपनी, लेकिन की सुरक्षा का सबसे आसान तरीका ही भूल जाते हैं, और वो है सही तरीके से हाथ धोना। हमारे हाथों पर कई तरह के जर्म्स यानी सूक्ष्म जीव आ सकते हैं। जब हम गंदे हाथों से अपनी आँखों या नाक, मुंह और कोई हमारे बॉडी पार्ट्स को छूते हैं और उसी गंदे हाथों से खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं, तो ये जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसे हमें दस्त जैसे डायरिया, व्हाट वी कॉल, पेट के इन्फेक्शंस और सांस से जुड़ी कुछ बीमारियां लाइक एलर्जीज फैल सकती है। इसलिए हाथ धोना सिर्फ सफाई की आदत नहीं, बल्कि बीमारियों से बचाव का एक बहुत ही प्रभावी और सस्ता तरीका है।
0: मतलब हमें ऐसे लगता है कि हाथ धोना उतना जरूरी नहीं है, या फिर एक दो बार हाथ धोआ, हैंड वॉश किया तो ओके, उतना इनफ है, बट वैसे नहीं है। हाथ धोना भी बहुत जरूरी
1: है। और हाथ धोने से ही हम बहुत सारे बीमारियों से ऑलरेडी बच सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है।
0: तो हमें दिन में कितनी बार हाथ धोना चाहिए?
1: हाँ, हाथ धोने के कुछ महत्वपूर्ण समय है, होते हैं, जैसे खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हमारे हाथ साफ रहने चाहिए। इन केस टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं करने के बाद, यूजुअली यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, इट शुड बी क्लीन। खांसी या छींकने के बाद जब हम अपना हाथ यूज करते हैं, नाक साफ करते हैं, उसके बाद कुछ मदर्स अपने बच्चे का डायपर्स चेंज करते हैं, डायपर बदलने के बाद हाथ धोना चाहिए। कचरा छूते हैं उसके बाद हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे घर पे बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं, जब हम उनको छूते हैं, अपने पास लेते हैं, उनको छूने के बाद भी हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल अगर हम कर रहे हैं, या उनको हम देखभाल करने से पहले और बाद में भी हाथ धोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखें, हाथ देखने में साफ हो सकता है, तब भी उन पर जर्म्स हो सकते हैं।
0: अच्छा, एक्चुअली कोविड के वक्त में हम इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते थे, बट अभी फिर से शायद हम थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं कई कई बार। जैसे कि अभी आपने समझाया कि कब कब हमें हैंड वॉश करना चाहिए, तो कई बार उतनी बार हमसे हैंड वॉश नहीं होता है प्रॉपरली।
1: करेक्ट।
0: तो ये भी अभी मतलब स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना चाहिए कि कब कब हमें हैंड वॉश करना जरूरी है ये।
1: करेक्ट।
0: उसी के साथ हाथ धोने का कुछ तरीका भी होता है क्या? और है?

0: ये तो कौन सा है?
1: यस डेफिनेटली, अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे या कोई इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे, आपको वहां पे वॉशरूम्स में एक चेकलिस्ट लगा होगा, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ हैंड वॉशिंग, या फिर आप किसी ऑपरेशन थिएटर्स में जाएंगे तो वहां पे टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग करके स्टेप्स है. आई वॉन्ट टू मेक एवरी वन अवेयर ऑफ दैट. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाथ धोना, मतलब अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं हाथ धो के आ जाओ, वो भाग जाएगा, पानी के नीचे हाथ पकड़ेगा, फिर आ जाएगा, मैंने हाथ धो लिया.
0: करेक्ट.
1: तो वो सही नहीं है, वो सही तरीका नहीं है. हाथ धोने का एक तरीका भी हो सकता है. सिर्फ पानी से हाथ धोना उतना प्रभावी नहीं जितना साबुन और साफ बहते पानी से हाथ धोना है. इट शुड बी लाइक अ करेक्ट प्रोसेस. हाथ धोने के सही तरीका वेरी इजी, बहुत आसान है. इसमें लगभग हमको 40 से 60 सेकंड लगते हैं. इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ 1 मिनट प्रोसेस. सबसे पहले हाथों को पानी से गीला करें और साबुन लगाएं, फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े. उसके बाद एक हाथ की हथेली से दूसरे हाथ के पिछले हिस्से को साफ करें. उंगलियों के बीच, उंगलियों के पिछले हिस्से, अंगूठे और नाखून के आसपास भी अच्छी तरह साफ करें. अंत में हाथों को साफ पानी से धोकर साफ तौलिए से हम सुखा सकते हैं. अक्सर हम हथेलियों को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन अंगूठे, उंगलियों के बीच और नाखून को भूल जाते हैं. इसलिए हाथ धोते समय हर इस हिस्से की सफाई जरूरी है. तो वी शुड कीप दिस स्टेप्स इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि इट इज फॉर आवर सेटिस्फेक्शन कि हमने हाथ धो लिया. नहीं, हमें ये प्रोसेस एक करेक्ट टेक्निक यूज करना चाहिए. नेल्स, फिंगर्स, इन बिटवीन फिंगर्स, फ्रंट एंड बैक ऑफ हैंड्स, सब कुछ हमें बहुत डिटेल में हैंड वॉश करना चाहिए. स्पेशली बिफोर यू आर ईटिंग, स्पेशली बिफोर यू आर टचिंग समथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
0: तो आजकल सैनिटाइजर का यूज भी बहुत हो गया है, तो फिर सैनिटाइजर यूज करना ठीक है या फिर सिर्फ पानी से हैंड वॉश करना ठीक है?
1: हाँ, अगर सैनिटाइजर की बात करें तो पोस्ट कोविड इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया. इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, पहले उतना सैनिटाइजर का इट वॉज नॉट सो फेमस, लेकिन अब आप हर जगह देख सकते हैं. जैसे अभी आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं या फिर बच्चों के लिए बहुत सारे मदर्स, दे कैरी सैनिटाइजर, दे फील इट वेरी सेफ. हाँ, सैनिटाइजर एक उपयोगी विकल्प तो है, खासकर जब साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध जहाँ नहीं होता वहाँ पे डेफिनेटली सैनिटाइजर यूजफुल होता है. लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल सही तरीके से करना बहुत जरूरी है.
0: अच्छा.
1: लाइक ऐसा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर चुने जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो. मेन सैनिटाइजर लेकर दोनों हाथों की हथेलियां, उंगलियों के बीच, अंगूठे और हाथों पे अगर आप उसको अच्छी तरीके से लगाएंगे तो ही उसका आप यूसेज होगा, ऐसे बोल सकते हैं. सैनिटाइजर को कपड़े से तुरंत पोंछना या पानी से धोना नहीं चाहिए. अभी आप अगर सैनिटाइजर अप्लाई कर रहे हो हाथों को, तो इमीडिएटली आपको हाथों को पानी के नीचे नहीं रखना है या फिर कोई क्लॉथ लेके वाइप नहीं करना है, उसका इफेक्ट फिर कम हो जाता है. लेकिन अगर हाथ मिट्टी का तेल या फिर आपके हाथ बहुत ज्यादा गंदे हैं किसी और चीज से, लाइक खाने से या तेल से, तो साबुन और पानी से हाथ धोना बेहतर रहेगा रादर देन सैनिटाइजर. क्योंकि सैनिटाइजर डेफिनेटली मेक्स योर हैंड्स फ्री ऑफ जर्म्स, बट अगर आपके हाथ बहुत गंदे हैं तो आई सजेस्ट दैट यू वॉश विथ वॉटर एंड सोप.
0: तो क्या बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके हमारे स्किन को कुछ इफेक्ट होता है?
1: हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग पूछते भी है कि सैनिटाइजर का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. सैनिटाइजर का जरूरत के अनुसार सही इस्तेमाल आमतौर पे सुरक्षित होता है. लेकिन बार बार इस्तेमाल करने से कुछ लोगों की त्वचा में सूखापन, या जैसे कि योर स्किन, योर पाम स्किन में बिकम वेरी ड्राई, या फिर जलन, बर्निंग, इरिटेशन, इचिंग भी हो सकता है. थोड़े इंग्रेडिएंट से कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, दे रिएक्ट टू दोज इंग्रेडिएंट्स ऑफ सैनिटाइजर. तो इट इज बेटर कि आप पहले ही देख ले सैनिटाइजर चुनने से पहले कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन को अफेक्ट ना करे.
0: अच्छा.
1: कुछ लोगों को सैनिटाइजर के फ्रेग्रेंस या अन्य इंग्रेडिएंट से भी इरिटेशन हो सकता है. अगर आपको हाथों में सूखापन महसूस हो रहा है आफ्टर यूजिंग सैनिटाइजर, ड्राइनेस हो रहा है, इचिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर या हैंड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जरूरी बात, हर समय सैनिटाइजर लगाने की जरूरत नहीं होती है। सही समय पर हाथ साफ करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि एवरी टाइम हमें सैनिटाइजर यूज करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके हैंड्स क्लीन है तो देर इज नो नीड ऑफ यूजिंग सैनिटाइजर। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स में ये बोल सकती हूँ कि सैनिटाइजर को बच्चों की पहुंच से दूर रखना बेहतर होगा, और उसे कभी भी बच्चों को टच से ज्यादा दे ट्राई टू पुट इट इन देयर माउथ, मुंह में डालने की छोटे बच्चे कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्कोहल वाला सैनिटाइजर निगलने पर गंभीर नुकसान हो सकता है। तो इट्स बेटर यू अवॉइड इन केस ऑफ चिल्ड्रन।
0: अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी के दृष्टिकोण से बीमारियों की रोकथाम को कैसे समझा जा सकता है?
1: होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यू कैन से इज अ होलिस्टिक अप्रोच। जैसे हम पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करते हैं, उनके डिसीज को एज अ होल पर्सन, एज अ होल कंसिडर करके, सारे सिम्टम्स कंसिडर करके हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। होम्योपैथी में व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य, उसके लक्ष्यों और व्यक्तिगत विशेषताओं को महत्व दिया जाता है। लेकिन बीमारियों की रोकथाम की बात करते समय हमें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्वास्थ्य संबंधी आदतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑफ कोर्स होम्योपैथी इम्यूनिटी अंदर से बढ़ाता है, और अंदर से हमको इतना स्ट्रांग करता है कि हम बाहर के बैक्टीरिया माइक्रोब से लड़े, इतना होम्योपैथी का डायनामिक एक्शन उसे हम बोलते हैं। उस लेवल पे होम्योपैथी एक्ट करता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, हमेशा हमें वी शुड स्टार्ट विथ अवर सेल्फ रादर देन गोइंग टू डॉक्टर फर्स्ट। हाथ धोना, साफ पानी पीना, गुड लाइफस्टाइल मेंटेन करना, संतुलित आहार लेना, अच्छे पर्याप्त नींद लेना, नियमित शारीरिक गतिविधि लाइक यू हैव गुड फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये सब स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य की देखभाल में जागरूकता और बीमारियों से बचाव की आदतों का बहुत महत्व है।
0: ये तो होम्योपैथी की बात हो गई मैम, फिर से मैं हैंड वॉशिंग के बारे में पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ हाथ धोने से हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं?
1: नहीं, हाथ धोना बहुत जरूरी है, लेकिन ये हर बीमारी से बचाव की गारंटी नहीं देता। डेफिनेटली बहुत बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यही मैं आपको स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे छोटे बच्चों में या बड़ों में भी ले लीजिए कि दस्त होता है, डायरिया होते हैं, हाथ के इन्फेक्शन होते हैं, अगर हमारा हैंड्स क्लीन रखते हैं तो वी कैन प्रिवेंट दीज डिसीजेस। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो हवाओं में मौजूद सांक्रमिक स्मॉल जर्म से फैल सकते हैं, कुछ मच्छरों से फैल सकते हैं, कुछ दूषित भोजन से या इवन पानी से भी फैल सकते हैं। तो इसलिए हमें अलग अलग बीमारियों के अनुसार सही बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। हाथ धोने से ये सारी बीमारियां हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। जैसे हाथ धोने के साथ भोजन की सफाई, साफ पानी, मच्छरों से बचाव, ये बहुत जरूरी है, और बीमारी के लक्षण होने पर सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। और याद रखें, इम्यूनिटी को एक दिन में नहीं बढ़ाया जा सकता। अच्छी सेहत के लिए नियमित और संतुलित जीवन शैली जरूरी है। दैट इज अ गुड लाइफस्टाइल इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द इम्यूनिटी, एंड लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
0: बिल्कुल, यानी कि हाथ धोने की जो हैबिट है हमारी, उसकी वजह से सभी बीमारियों को तो हम रोक नहीं सकते, बट काफी हद तक हमें इफेक्ट होता है।
1: करेक्ट, प्रिवेंट तो कर ही सकते हैं।
0: कर सकते हैं। बच्चों में हम इसकी आदत कैसे लगाएं?
1: हाँ, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल होता है। स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जाता है व्हाई क्लीन हैंड्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाई हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। बच्चों को हाथ धोने की आदत डांट कर नहीं सिखा सकते अकॉर्डिंग टू मी, बल्कि डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड अंडरस्टैंडिंग उनको प्यार से हम सिखा सकते हैं, या स्कूल में जैसे खेल खेल में सिखा सकते हैं, या फिर माता पिता खुद हाथ धोकर उनके सामने एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। स्कूल में जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, पोस्टर बनाने के लिए कहते हैं, तो इस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। बच्चों को सिखाए कि खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ धोना जरूरी है। उन्हें आप इन द फॉर्म ऑफ पोयम या फिर कोई गाना गाते हुए 20 सेकेंड तक हाथ धोना, उसका इम्पोर्टेंस, फिर उसकी आदत कैसे बनाई जाए, ये सब हम सिखा सकते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी हाथ धोकर ना भाग जाए। स्कूल में भी हैंड वॉशिंग एक्टिविटीज, पोस्टर्स और छोटे डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए बच्चों को बहुत अच्छी जागरूकता आजकल मिल रही है। दिस इज व्हाट आई कैन से। एंड बचपन में सिखाई गई सफाई की आदतें जीवन भर काम आती है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू इनकल्केट दीज हैबिट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड इटसेल्फ।
0: सही है, बट बच्चों को थोड़ा एंगेज रखना वो पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट ऐसे कुछ एक्टिविटीज में अगर हम उनको इन्वॉल्व करें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसी के साथ आप अभी केली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है बसवन कुर्ची में, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, या फिर लोगों को अगर उधर आना है तो क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या ओपीडी है, कैसे रहता है टाइमिंग?
1: हाँ जी हाँ, अगर आपको होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में जानकारी लेनी है या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए परामर्श चाहिए, तो आप बेलगावी में स्थित बसवंत कुर्ची में केली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहाँ पे होम्योपैथी ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ आप अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर आ सकते हैं और कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसके आगे की चिकित्सा के बारे में भी जानकारी आप वहां के कंसल्टेंट से ले सकते हैं। और एक ओपीडी जो है वो प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल के आयुष क्लिनिक में ओपीडी नंबर 5 पे भी उपलब्ध है, आप वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं और कंसल्टेशन के लिए आप जा सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी, अपॉइंटमेंट या ओपीडी का समय की पुष्टि के लिए संबंधित हॉस्पिटल या क्लिनिक से पहले ही आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके आप वहां पे जा सकते हैं।
0: अच्छा, यानी बसवन कुर्ची के साथ साथ जो मेन केली है उधर भी एक ओपीडी आपकी स्टार्ट रहती है?
1: यस।
0: प्रोग्राम के अंत में मैडम हम हमारे लिसनर को क्या मैसेज देंगे?
1: मेरे सभी लिसनर से बस मुझे इतना कहना है कि सेहत की सुरक्षा के लिए हमेशा बड़े और महंगे उपायों की जरूरत नहीं है, कभी कभी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं ऑन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, कि हाथ धोना, उसका उपाय बच्चों को सिखाना और अपने परिवार को भी इसके प्रति जागरूक करें। याद रखिए, साफ हाथ सुरक्षित परिवार और स्वस्थ समाज की पहली सीढ़ी है, दैट इज क्लीन हैंड्स स्ट्रांग इम्यूनिटी। यही साफ हाथ बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव की मजबूत आदत बन सकती है। धन्यवाद।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम इस विषय पे बात करने के लिए आपने समय दिया। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आपके लिए वेणु धोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है आज, उसके चलते हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या टेक्निक्स है, क्यों हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, ये सभी जानकारी आज के शो में आपको मिली। हमारे साथ थी डॉक्टर सुप्रिया कुलकर्णी, जो केली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मटेरिया मेडिका डिपार्टमेंट की प्रोफेसर और HOD है, उसी के साथ डीन ऑफ फैकल्टी है। उनको हम सुन रहे थे। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा, नंबर है 9019904904। ये है केली वेणु धोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर, विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377, एक्सटेंशन 1530।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसो और हमारा फेवरेट शो यादों की बारात लेके आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, हम इस शो पे आपको कुछ ऐसे सदाबहार नगमे सुनाते हैं जो आप रोज तो नहीं सुनते, पर जब भी सुनते हैं तो गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते। आज का शो ना थोड़ा सा हटके है, पता है क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर आज का ये शो आधारित है उनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि इनके जैसी कोई हीरोइन है और उन्होंने ये सारी फिल्में की है, उन फिल्मों में ये सारे गाने हैं, ये मुझे कतई पता नहीं था। उसमें से बस एक गाना थोड़ा जाना पहचाना जरूर था दोस्तों। तो आप सोचोगे अगर स्वरा आपको इस हीरोइन के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो आपने यादों की बारात कैसे किया। जनरली हम ना बैठ के इंटरनेट पे और हमारे यहाँ पे जो भी सोर्सेज है उनके ऊपर रिसर्च करके हम हमारे शोज बनाते हैं। तो यूं ही मेरी नज़र इस नाम पे पड़ी और क्यूरियोसिटी जागी कि भाई ये है कौन और उन्होंने क्या क्या किया है। तो जैसे जानने की कोशिश की वैसे वैसे और जानकारी मिलती गई और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और उसी का नतीजा है आज का शो। अच्छा, और सस्पेंस नहीं बढ़ाती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आज का शो नलिनी जयवंत के ऊपर आधारित है। और बातें बताने से पहले सुनते हैं उनका ये पहला गाना। नौजवान फिल्म का ये गाना है जो 1951 में रिलीज हुई थी, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, म्यूजिक दिया है ST बर्मन ने और इस फिल्म में प्रेम नाथ के साथ साथ नलिनी जयवंत ने काम किया था। गाने के बोल है ठंडी हवाएं। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसो।

दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि नलिनी बड़ी होके फिल्मों में काम करेंगी, क्योंकि उनके पिताजी फिल्मों के काफी खिलाफ थे। पर आगे चल के जब नलिनी की बुआ की बेटी फिल्मों में काम करने लगी, जिनका नाम था शोभना समर्थ, तो उसके आगे नलिनी को फिल्मों में काम करने से कोई नहीं रोक पाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि कई शानदार फिल्में उन्होंने की, जिसमें कई खूबसूरत गाने हैं और उनका अभिनय बहुत ही खूबसूरत रहा है। अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ, अभी शाम आएगी, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। समाधि फिल्म का ये गाना है जो 1950 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नलिनी जयवंत के साथ हमने अशोक कुमार को देखा था। म्यूजिक दिया है सी रामचंद्र ने। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासूर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादव के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यूनिथुमड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

गाते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड न।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।